0: क्या मैं कहाँ से को सर?
1: आप में है सवाल ये क्या फॉर दिस पेज ऑन आवर रूम ट्राइंग टू फिगर आउट हु वाज द वन टू कॉल बिकॉज़
0: ऑफ दैट इशू इशू